नमस्कार, एफ एम एन 102.7 MHz से असी आकाशवाणी जलंधर दे एफ एम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। अज मंगलवार है, शक संवत 1948 दे वैसाख महीने की 22 तारीख, ईस्वी सन 2026 दे मई महीने की 12 तारीख है। इस वेले स्टूडियो घड़ी मुताबक 5:58 हो रहे हैं ते साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम हुण शुरू हुंदे ने। सभा की इस खूबसूरत शुरुआत विच असी अपने सारे सुनने वालों का निघा स्वागत करते हैं।

फरीदा बुरे का पलाकार, गुस्सा मन ना हंडाए, दे रोग ना लग दी, भला सब कुछ पाए। बाकी जेकर बुराई करन वाले नाल भी भलाई असी कर सकीए तां किन्ना चंगा हो सकता है। बुराई करन वाले दे नाल भी हमेशा सानू चंगा ही करना चाहिए, गुस्सा मन दे विच कदे नहीं आना चाहिए। इस तरह शरीर नू कोई रोग भी नहीं लगता ते सारी साढ़े जिहड़े सारे चंगे गुण हुंदे ने ना, चंगे काम हुंदे ने ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ

सूचना आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

ये खुला आसमान जिहड़ा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस खुले आसमान नू असी इस दे नीले रंग दे करके पहचानते हैं। और असी साड़ी अखां नू सुकून देने वाला रंग किहड़ा है, तुसी दसो। तुसी सोचिया होए कदी कदी कोई रंग तुसी चूज़ कीता जिंदगी दे विच जिहड़ा तुहानू सुख दिंदा होवे, शांति दिंदा होवे? मेरे लिए हरा रंग और सफ़ेद रंग, चिट्टा रंग है ना, वह हमेशा शांति मैनू दिंदा। हाँ, बहुत ही काम दिमाग अगर कित भी दौड़ रहा ना, उस मैनू शांत कर दिंदा उदों में कलर। सो थोड़े लिए ऐसा कोई रंग होवे तां मैं कह जरूर दस्यो, है ना। सो खूबसूरत जिहा रंग जिहड़ा ना, एक रंग ऐसा रंग है हरा रंग जिहड़ा कि सानू शांत भी करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता है और सानू हर एक बाकी रंगा के ना जुड़ा। रंगा की गल हुई है और हरे रंग की गल हुई है। हरा रंग जिहड़ा ना साढ़े पौद्या का रंग, साढ़े प्लांट्स का रंग है और ये रंग सानू याद दवाउंदा भाई। और अज है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ और पौद्या की सेहत नूं लैके, पौधे चंगे होण और किवें उन्हां दी देखभाल करनी है, किवें उह साडे लई, अगर असीं उन्हां दी देखभाल कर सकते हाँ, कर रहे हाँ, तो वह अगे जा के किवें सानूं चंगा फल देणगे, चंगा जिहड़ा है साडे लई फूड वह प्रिपेयर करनगे। तो आज इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दे वल्लों ये दिन मनाया जाना शुरू होया सीगा, अंतरराष्ट्रीय पौधा सेहत दिवस। हर साल 12 मई नू आज दी तरीक नू जिहड़ा है ये दिन सैलीब्रेट होना शुरू होंदा है और बस पूरा दिन जिहड़ा है लोगों नू इस दे प्रति जागरूकता जिहड़ी है फैलाई जाती है, दस्या जाता और इसका मकसद जिहड़ा लोगों नू इन्हां प्लांट्स की जिहड़ी है चंगी सेहत दे लई उन्हां दी महत्ता बारे जागरूकता दवाना हुंदा। साडी जिंदगी दे विच ना बहुत वड्डा हिस्सा जिहड़ा सानू खाण दे लई अनाज, फल ते सब्जियां इन्हां प्लांट्स तों मिलदियां ने, ऑक्सीजन सानू इन्हां प्लांट्स तों मिलदी है, वातावरण नू साफ सुथरा रखण दा काम ये प्लांट्स करदे ने, जंगली जीवां दा आसरा जिहड़ा ये प्लांट्स बणदे ने। पर अजकल असी देखे कि कई ऐसे कीड़ियाँ या बीमारियाँ प्रदूषण के करके, मौसमी तब्दीली के करके इन्हां पौद्यां दे विच काफ़ी तरह का जिहड़ा है नुकसान भी हो रहा इन्हां पौद्यां दा। सो इन्हां दी सुरक्षा भी बनती है, इन्हां दी सुरक्षा लई लोकां दा जागरूक होना भी बनता है। सो साल 2022 दे विच यूनाइटेड नेशनस दे वल्लों 12 मई नूं जिहड़ा इंटरनेशनल प्लांट्स हेल्थ डे सैलीब्रेट जिहड़ा करन दे लई घोषणा कीती गई सी। और इस तों पहलां 2020 दे विच जेकर गल कीती जाए तां इंटरनेशनल ईयर फॉर प्लांट हेल्थ वजों मनाया गया सी। सो पौधे जिहड़े ना दुनिया दे विच लगभग गल कीती जाए तां 80% भोजन जिहड़ा पौद्यां तों मिलदा सानूं और ये प्लांट्स जिहड़े ने बीमार जेकर हो जाणगे तां ओबवियसली गल है ना साडे अनाज की भी कमी होएगी। और जेकर गल कीती जाए तां सेहतमंद पौधे सानू जे कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़े घटाउंदे ने धरती तों, तापमान जिहड़ा इस नूं संतुलित रखण दे विच मदद करदे ने, सानू ऑक्सीजन दिंदे ने, सानू खाणा दिंदे ने, सानू होर किन्ना कुछ साफ वातावरण दिंदे ने। और खेतीबाड़ी दे नाल जुड़े लखां लोकां दे लई रोजी रोटी दा काम करदे ने, ओह निर्भर ने इन्हां पौद्यां दे उत्ते, खास करके इंडिया दे विच जेकर जिहड़ा कि खेती प्रधान देश है और साडा पंजाब जिहड़ा है अनाज दे लई जाणिया जांदा है। भारत दे विच जे गल कर कीती जाए तां कपाह फलां दीआं फसलां जुड़ियां ने, कई बार इस दे विच कीड़े बीमारियां दा नुकसान बीमारियां दे करके नुकसान पहुँचता है। जैविक खेती किसान जिहड़े ने जैविक खेती घट कीटनाशक या रुख लगाउण दे वल ज़्यादा ध्यान देण दी गल कही जांदी है। हमेशा ही पंजाब दे विच पराली प्रबंध हो गया, मिट्टी दी सेहत दे बारे लोकां नूं हमेशा या किसानां नूं खास तौर ते दस्या जांदा है और जागरूकता जिहड़ी है फैलाई जांदी है। हेल्दी प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स।

ईंधन संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश ने भारत विच आईसीसी 2020 विश्व कप तों हटन दे अपनी टीम दे कारणा दी जांच लई एक 3 मैंबरी जांच कमेटी दा गठन कीता है। 10 मई नूं जारी कीते गए एक अधिकारित निर्देश मुताबक साबका वधीक सकत्तर डॉक्टर ए के एम अली उलाह कमेटी दे चेयरमैन होणगे। कमेटी विच बांग्लादेश क्रिकेट टीम दे साबका कप्तान ते मौजूदा मुख चोणकार हबीबुल बशर अते सुप्रीम कोर्ट दे वकील फैजल दस्तगीर शामिल ने। कमेटी नूं 15 दिनां विच जवाब देण लई आख्या गया है। IPL क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स नूं 3 विकटां नाल हराया। अज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल शामी 7:30 बजे अहमदाबाद विच होवेगा। ते आखर च खास खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा बचाउण लई लोकां नूं ईंधन अते विदेशी उत्पादां दी वरतों घटाउण दी अपील कीती। सीनियर बीजेपी नेता हिम्मत बिस्वा सरमा अज गुवाहाटी विच असम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दक्षणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले च पछमी बंगाल दे साबका मंत्री सुजीत बसू नूं गिरफ्तार कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तो संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे ते इटली दे 6 दिनां दौरे ते रवाना होणगे। अते बंगलादेश ने भारत विच आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप तो अपनी टीम दे हटन दे कारणां दी जांच लई एक 3 मैंबरी जांच कमेटी कायम कीती। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां खत्म हुईयां। नमस्कार।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com या newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz FM Rainbow Channel ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 103.6 MHz ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰ ਜੇ ਅੰਜਲੀ ਔਰ 8:42 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਟ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ली तू कौन संभालेगा

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

हेलो जी, नमस्कार जी, सारे दा स्वागत है जी थोड़े अपने प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच। मैं हाँ जी थोड़ी अपनी आरजी अंजलि और लेके हाजिर हो गई हाँ जी थोड़ा अपना मेरा अपना प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिथे गल्लां हुंदियां ने दिल तो दिल तक दियां और पंजाबियां तो पंजाबियां तक दियां। जिथे असी गल्लां बातां ही नहीं करते, जिथे असी टैलेंट भी शेयर करते हैं। टैलेंट शेयर इस तरह करते हैं कि तुसते थोड़े विच कोई भी कलाकारी हैगी है, थोड़ी भी कोई भी थोड़ा टैलेंट हैगा तो तुसी मैनू भेज सकते हो 9855 10 10 27 नंबर के उत्ते। इस नंबर पर तुसी मैनू करना जी टैक्सट मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज तुसी भेज सकते हो। और इस इन्हां मैसेजेस नूं मैं करांगी अपने प्रोग्राम दे विच शामिल। बाकी गल्लां बातां तां हुंदियां रहिणियां ने, होणियां भी ने, बहुत सारे मैसेजेस जिहड़े ने मैनू पता साडे लिसनर दोस्तां ने भेजणे शुरू भी कर देणे ने और तुसीं भी भेजो। बाकी प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते और नाल दी नाल 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर दे सरोते साडे नाल जुड़े हुए ने FM रेनबो चैनल दे उत्ते। तुसीं प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो अपनी आरजे अंजलि दे नाल।

0: दूर दूर जांदे जांदे अंजली जी आवाज सुन के FM ते आ गए। दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम दे सारे ही सुनने वालों नू ते अंजली जी नमस्ते, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
0: और बहुत ही वधिया अज दे दिन दी तुसी कीती सवेर तो वधिया शुरुआत, प्रभु बंदना तो लैके बहुत ही वधिया परमात्मा दे चरणा दे नाल जोड़िया, सानू निहाल कीता और नाल दी नाले ही बहुत वधिया गुड मॉर्निंग प्रोग्राम दे विच अज दसवीं क्लास दे रिजल्ट और नतीजे दे उत्ते गलबात कीती। बहुत ही वधिया अंकड़िया ते गलबात करदिया होया और बच्चियां नू सोहनी सिक्ख्या भी दित्ती, उन्हां नू सुचेत भी कीता कि सोहना जिहा पढ़ो, सोने सोने होर नंबर लैके आओ, अपनियां डिग्रियां लैके आओ, अपने सोने सोने नंबरां दे नाल घरदिआं नूं खुश करो।
2: बिल्कुल, बच्चियां नूं इस दे उत्ते गौर फरमाउण दी लोड़ आ।
0: सो अंजली जी, बहुत सोहणियां जानकारियां दिंदिआं होइआं अज सारे ही भैण भरावां नूं तुसीं नर्स दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां दित्तियां। इह जिहड़ा दिन मनाया जाता है इनू असीं इस दिन दे उत्ते याद करदे हां कि 22 मई 12 मई दे उत्ते तुसीं गलबात कीती। 12 मई दा दिन बहुत वधिया एक तरीक

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: प्रोग्राम चल रहा है जी, थोड़ा अपना दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम, थोड़ी अपनी आरजे अंजली दे नाल। और मैसेजेस आ रहे ने इस प्रोग्राम दे विच, बहुत सारे लिसनर दोस्त मैसेज भेज रहे ने। अगला मैसेज केड़ा आया, आज पहला सुनते हैं।
4: हेलो दोस्तों, दिल अपना पंजाबी में जी एस मुल्तानी। दोस्तों हजारा जी एक लाइन दो लाइना लैके गई छोटे दियाँ। मैडम जी तुहानू तो तुहाडी सारी टीम नू प्यार भरी सत श्री अकाल। सर जी
3: सत श्री अकाल।
4: मेहनत कर यारा, सफलता आपे ही मिल जावेगी। दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाना है। दुनिया तेरे ही गुण गावेगी, दुनिया तेरे ही गुण गावेगी। मेहनत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौण वे, मेहनत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौण वे। हथ ते हथ तरक बैठा रहना, समझाए तेनू कौन वे। मेहनत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौण। रिश्ते साडे दी गल चल पई हो, रिश्ते साढ़े दे गल चल पई, कम धंधा कोई करदा नहीं। ऐश करदा यारा ना, नशे बिना तेरा सरदा नहीं। नाल तेरे वे अखा लागे, लगी मैं पछताउण वे।

0: एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। ते प्रोग्राम शुरू हो गया है जी गीत बहार। ते गीत बहार विच मैं हाँ तुहाडे नाल तुहाडी दोस्त आजे निवेदिता।
1: दिल का दरिया।
0: वेल दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार दे विच बहुत सारे गीत, बहुत सारिया गल्लां बातां असी करांगे। ते गीतां दी फुहार दे नाल प्रोग्राम नू बनाया जाएगा एंटरटेनिंग। ते इनफॉर्मेशन दी डोज भी पूरी रहेगी। सो तुसी जाना किते भी नहीं है, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल ते इंजॉय करते रहना प्रोग्राम गीत बहार। ते फिलहाल प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह दे इस गीत दे नाल।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार। ते दोस्तों गीत बहार प्रोग्राम मतलब गीता दी बहार, ते गीता दी बहार मतलब एंटरटेनमेंट दी पूरी डोज। पर दोस्तों एंटरटेनमेंट दे नाल नाल तुहानू पता कि इन्फॉर्मेशन किन्नी जरूरी होंदी है लाइफ दे विच, बहुत जरूरी होंदी है। ते यही तो रीज़न है कि रेडियो दे इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट की डोज इकट्ठी दी जाती है, तो इन्फोटेनमेंट बन जाता है। सो दोस्तों इन्फोटेनमेंट की गल करते करते मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहला इन्फॉर्मेशन का इको एक सोर्स होंदा सी किताबां ते अखबार। हुण तां इन्फॉर्मेशन दे बहुत सारे सोर्सिस बन गए, पर पहला किताबां ते अखबार ही होंदे सी। और इस सोर्स के जरिए जिहड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती सी ना, वह ऑथेंटिक होंदी सी और उस इन्फॉर्मेशन का कोई मुकाबला नहीं सी। ना ही उहदे विच फैक्ट्स की तोड़ मरोड़ होंदी सी, ना ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिती जाती सी। ते असी अखां बंद करके भी विश्वास कर सकते सी कि इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सानू अखबार या किसी बुक चो मिली है ना, यह बिल्कुल ठीक है। पर हुण जो सोर्सेज साडे कोल ने उहदे विच कच्ची पक्की जी इन्फॉर्मेशन हुंदी है, असी अखां बंद करके विश्वास कर लैंदे आ, ते उहनू असी कितों भी क्लैरीफाई करन दी कई वारी कोशिश भी नहीं करदे, ते असी भरम दी दुनिया दे विच भी चले जांदे आ। सो गल मुकदी इत्थे है कि रोज़ाना कुछ समा किताबां जां अखबार पढ़न लई जरूर कढ़िया जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो ऑथेंटिक सोर्स है ना वो यही है। ये ना तो सिर्फ साड़ी जानकारी वधाउंदा है, सगों साड़ी सोच नू भी एक नवी दिशा मिलती है। सो बेशक असी अपडेटेड हो गए हाँ, साढ़े कोल मोबाइल फोनस ने, टैब्स हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, असी जिदा की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो चाहिए है सानू वो सानू अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। पर किताबां या अखबारां दा अज भी कोई तोड़ नहीं है। सो थोड़ा समय ही सही भावें, पर जरूर कढ़ो, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला होर किसी सोर्स के नाल नहीं हो सकता। सो प्रोग्राम गीत बहार के विच गीतां दी लगी हुई है जी फुहार। तो हुण मैं थोड़े लिए प्ले करन जा रही बहुत ही प्यारा गीत अली ब्रदर्स की आवाज़ के विच मोहब्बत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्यायबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते ने। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, तुहाडा अपना प्रोग्राम पंजाबी तड़का, मेरे यानी तुहाडी दोस्त निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों, पंजाबी तड़का जिवें कि तुसी जानदे हो कि तुसी पंजाबी गीतां दी फरमाइश कर सकदे हो, ते फरमाइश किवें करनी है जी, फोन दे जरिए। नंबर मैं तुहानू दस दिंदी हां 0181 23 42 174। ये नंबर डायल करके तुसी साडे तक पहुँच कर सकदे हो, गलबात कर सकते हो, कोई किस्सा कोई कहानी कुछ साझा करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो अपनी फरमाइश का गीत भी तुसी प्ले करवा सकते हो। सो देर किस गल दी, फटाफट फोन उठाओ ते कॉल करनी शुरू करो, क्योंकि मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ। सो 23 42 174 नंबर डायल करना है जी, ते तुसी पहुँच जाओगे रेनबो स्टूडियो दे विच, जिथे थोड़ी गलबात होएगी मेरे यानी निवेदिता दे नाल, ते जिहड़ा गीत तुसी फरमाइश करोगे वो असी जरूर प्ले करांगे। हेलो जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत होएगा मेरी पसंद का, ते उस तो बाद वाले गीत होणगे तुहाडे पसंद दे। ते प्रोग्राम की शुरुआत गुरनाम भुल्लर दे इस गीत दे नाल।

0: इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो अगले कॉलर पहुंच चुके ने साढ़े तक। तुहानू पता है कि अज मैं पूछ रही हाँ, अज भेत खोल रहे हैं भी जिहड़े नाम उन्होंने लुकोए हुए हैं ना वो मैं पूछने हैं, है ना। तो देखते हैं कि अगले कॉलर किहड़े नाम दे नाल आ रहे ने साढ़े कोल। हैलो,
1: पल पल दोस्ती का वादा है
0: जी
1: अपनापन कुछ

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते तुसे सुन रहे हो FM रेनबो ते हुन पेश ने FM न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान विदेशी मुद्रा बचाने लई लोगों नूं ईंधन अते विदेशी उत्पादों की वरतों घटाने की अपील की। सीनियर बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा अज गुवाहाटी विच असाम दे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले विच पछमी बंगाल दे साबका मंत्री सुजीत बसु नूं गिरफ्तार कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तो संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नार्वे और इटली के 6 दिन दौरे ते रवाना होंगे। खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक।

0: खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: प्रोग्राम चल रहा है जी होम स्वीट होम ते होम स्वीट होम दे विच मैं हाँ निवेदिता थोड़े नाल। वेल दोस्तों, सानू पता है कि मौसमी फल सब्जियां जड़े होंदे ने ना किन्ने इंपॉर्टेंट है। असी अक्सर अपने वड्डे आ तो अपने घर दे तो सुनिया होना है कि मौसमी फल सब्जियां जरूर खाने चाहिए ने, क्योंकि कुदरत सानू मौसम दे अकॉर्डिंग जड़े फल सब्जियां दिंदी है ना, वह किसी भी औषधि तो घट नहीं होंदे। जेकर हुण गल करिए गर्मियां दी, ते अजकल खरबूजे तरबूज दी भरमार हो जाती है, ते हर घर विच खरबूजे तरबूज आउंदे ने, ते असी सारे खांदे भी हाँ। पर सानू कई बार ये नहीं पता हुंदा कि जड़ा फ्रूट या जड़ी वेजिटेबल जड़ी सब्जी असी खा रहे हाँ, ये सानू किस तरह फायदा दे रही है, किन्नी लाहेवंद है। सो खरबूजा साढ़े लिए किदा लाहेवंद है, ये बारे अज असी गलबात करांगे कि किदा साढ़े शरीर नू खरबूजा किन्ने ही फायदे प्रदान करता है। खरबूजा शरीर नू ठंडक देंदा है दोस्तों, गर्मी तो बचाउंदा है, क्योंकि ये पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होंदी है, सो शरीर नू हाइड्रेट रखन दे विच हेल्प मिलती है। इस तो अलावा खरबूजा विटामिन सी नाल भरपूर होंदा है, सो इम्यूनिटी वधदी है, रोग प्रतिरोधक जिहड़ी साड़ी शक्ति है वह वधदी है। और तुहानू पता है कि इहदे विच फाइबर ज़्यादा है, इसलिए साडा डाइजेशन सिस्टम है जिहड़ा उहनू इंप्रूव करदी है, पाचन प्रणाली साडी मजबूत हुंदी है, ते कब्ज़ तों राहत मिलदी है। खरबूजा साडी अखां दी रोशनी दे लई वी लाभकारी मन्निया जांदा है, क्योंकि इहदे विच विटामिन ए भी हुंदा है। यही नहीं, ये साड़ी चमड़ी नू भी निखारदा है जी, चमड़ी नू ताजगी ते निखार देण दे विच हैल्प करदा है। इस तों इलावा हार्ट के मरीजों लिए खरबूजा बहुत वधिया, दिल की सेहत लिए चंगा है, तो ब्लड प्रैशर नू भी संतुलित रखता है। इत्थे ही इहदे फायदियां दी लड़ी है जिहड़ी खत्म नहीं हुंदी। इहदे विच कैलोरी घट है, इसलिए वजन घटाउण वालियां लिए भी फायदेमंद है, तो गुरदियां दी सफाई दे विच भी मदद करता है खरबूजा। सो इस तों इलावा सानू ऊर्जा भी प्रदान करता है, सानू थकावट लगती होवे तो खरबूजा खाओ, तुहानू ताजगी लगन लगती है, शरीर विच ताकत आ जाती है। खरबूजे दे जिहड़े बीज है वह भी बहुत पौष्टिक हुंदे है, तो शरीर नू ताकत दिंदे है। गर्मी दे विच हीट स्ट्रोक तो बचा दे लई ये फल ये फ्रूट बहुत ही वधिया है। सो मैं तुहानू दस दित्ते इहदे इन्ने फायदे ने, एंडलैस इहदे बेनीफिट्स हैगे ने, ते सानू खरबूजा खाण तो हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मियां दी ये सौगात है। ते होर गर्मियां दीयां सौगातां केड़ियां ने जी, उहदे बारे भी असी गल करांगे, पर उस दे लई तुहानू बने रहना पएगा साडे नाल, ते पहला इंजॉय करांगे एक गीत, उस तों बाद वापस आओगे, ते फिर मैं किसी होर गर्मियां दी सौगात दी गल भी जरूर करांगी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम। तो दोस्तों होम स्वीट होम के विच असी रेसिपीज़ की गल भी कर ली, घर नू डेकोरेट करन दी गल भी कर ली, खाने पीने की भी गल हो गई, तो हुण फैशन किवें पिछे रह जाए। सो फैशन की भी गल करांगे। दोस्तों फैशन की गल करिए तो कलर थैरेपी मेरे दिमाग में आ रही थी कि कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुंदा साडी पर्सनैलिटी नू डिपिक्ट

0: जिक्र दौलत दा आया ते अर्ज कर दिया।
1: फरमाओ बादशाह।
0: झूठी सब संसार दी दौलत, दिल हुंदा दिलदार दी दौलत, सब कुछ अपना वार देदा जे मिल जाए प्यार दी दौलत। रब नू मनाना कोई

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत ते मुताबिक बुलाया जावेगा।

इंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। ये प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, मिड डे मेलोडीज। मिड डे मेलोडीज दे विच निवेदिता रहेगी तुहाडे नाल, ते दोस्तो गल करांगे उस दौर दी जदों व्हाट्सएप नहीं हुंदा सी, ते जदों जिहड़े मैसेजेस ने सुनेहे ने व्हाट्सएप ते या फोन दे जरिए नहीं भेजे जांदे सी, बल्कि कागज़ां ते लिख के भेजे जांदे सन। जदों डाकिये दी उड़ीक विच पूरा पूरा दिन लंघ जांदा सी,

एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़। दोस्तों 60-70 दे दौर दी गल करिए तां उस समय प्यार दा पैगाम इंज नहीं भेजिया जांदा सी जिवें अज पलां दे विच व्हाट्सएप ते असी अपने प्यार दा इजहार कर देने आ। नहीं, उस समय रातां लंघ जांदियां सन खत लिखदिआं। खत एक दिन विच या कुछ घंटिआं विच कुछ पलां विच नहीं सी लिखिआ जांदा। कई कई दिन कई कई रातां लंघ जांदियां सन खत लिखदिआं ते उह खत अमुल बन जाते सन, वो फुलां वांग बन जाते सन। तो हुण मैं तुहाडे लई प्ले कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा जगीत जिस विच जिक्र किया गया कि चिट्ठी विच फुल भेजना तो उसनों दिल का पैगाम मन लेना, ये अजकल तो नहीं, ये गल्लां पुरानियां हो गई ने। तो कई बार पुरानियां गल्लां दिल नूं बहुत चंगिया लगदियां। तो आओ इंजॉय करते हैं लता जी ते मुकेश जी दे आवाज़ दे विच ये दो गाना, फूल तुम्हें भेजे हैं खत में।

0: वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा xhandle@TIRRNewsJalandhar, साडा फेसबुक पेज है RN-AIRJalandhar, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @TIRRJalandhar। आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस साल का विषय है साड़िया नर्सा साडा भविख। यह दिन दुनिया भर में नर्सिंग पेशेवर लिए बेहतर सहायता सुरक्षा और वसीलों की जरूरत को उजागर करता है। यह मरीजों की देखभाल भाईचारक सेहत और आर्थिक विकास में नर्सा की महत्वपूर्ण भूमिका को मानता देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवर नू साल 2026 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। यह अवार्ड नर्सिंग के खेत्र में उन्होंने शानदार योगदान लिए प्रदान किए गए। यह अवार्ड रजिस्टर्ड नर्सा मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और औरत सेहत विजिटर्स नू प्रदान किए गए। हरेक अवार्ड में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये का नकद इनाम और एक तमगा शामिल है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, सेहत राज मंत्री प्रताप राव जाधव ते होर पतवंते इस मौके मौजूद सन। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड 1973 विच सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वल्लों कायम कीते गए सन। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके ते अज गृह मंत्री अमित शाह ते सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सा नू देश दी सेहत संभाल प्रणाली दी रीढ़ ते उम्मीद दा थम दस्या है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने लखा रुपए के कथित रिश्वतखोरी के संबंध में बीती देर रात मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापा मारिया। ये छापा चंडीगढ़ स्थित CBI टीम ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून नाल संबंधित एक मामले में मारिया है। इस संबंध में पंजाब के मुकतसर जिले के मलोट कस्बे में एक घर से भी छापा मारिया गया। हालांकि जांच एजेंसी ने अजे तक कोई अधिकारित बयान जारी नहीं किया, पर हल्के मुताबिक CBI ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जांच अजे भी जारी है। इस दौरान साडे जलंधर वाले पत्रकार ने अधिकारित हल्कियां दे हवाले नाल खबर दिती है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पुष्टि की है कि CBI ने एक व्यक्ति नूं फड़ लिया ते जांच जारी है। ब्यूरो ने कहा है कि जेकर ब्यूरो विच्चों किसी का नाम आता है तो असीं CBI नाल पूरा सहयोग करांगे और कानून नूं अपना काम करन देवांगे। महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों अज के दिन सन 1710 विच सरहंद फतेह करन दी याद विच सरहंद फतेह मार्श मोहाली के पिंड चप्पड़चिड़ी तो रवाना होया। इस तो पहला चप्पड़चिड़ी स्थित गुरद्वारा श्री फतेह रंग साहिब विच अखंड पाठ साहिब के भोग पा के अरदास की गई। इस मौके ढाडी जत्थियां ने वारा गा के बाबा बंदा सिंह बहादुर की फतेह गाथा सुनाई। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार कुलदीप सिंह गड़का, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध के नुमाइंदे ते होर शख्सियत मौजूद सन। गृह मंत्री अमित शाह ने महान सिख योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सरहंद फतेह दिवस से देशवासियों को शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बेइंसाफी विरुद्ध संघर्ष की अगुवाई की, मुगलों को हराया, स्वयंमान हिम्मत ते धर्म की रक्षा का संदेश दिता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सरहंद फतेह दिवस से एक सोशल मीडिया पोस्ट राही महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और समूह शहीदों को नमन किया है। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद नाल होएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शामी 7:30 बजे शुरू होएगा। आखिर में बुलेटिन दियां खास खास खबरें एक बार फिर। पेपर लीक होने के इल्जामों कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, CBI जांच के हुक्म दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरे कार्यकाल लिए इल्जाम के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। अज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवर नू साल 2026 लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। CBI वालों लखा रुपए के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। इस दे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होएगा। नमस्कार।

एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम मिड डे मेलेडीज़। उम्मीद है कि अज का सुरीला सफ़र तुहानू यादां दे उस दौर विच लै गया होएगा जिथे चिट्ठियां विच प्यार वसदा सी ते पैगामां दे विच अपनापन। ते इस दे नाल ही तुहाडी होस्ट मैं निवेदिता लैनी है इजाज़त इस प्रोग्राम नू इत्थे ही वाइंड अप करन दी, पर जांदे जांदे एक गीत अजे होर तुहाडे लई प्ले करना है। ते कुछ ही पलां दे बाद होएगा अगला प्रोग्राम ते अगले आरजी तुहाडे नाल अगले सफ़र की शुरुआत करनगे। इस दे नाल ही मैनू दिओ इजाज़त। बाय बाय, गुड बाय।

प्रोग्राम तो से एंजॉय कर रहे हो दिलाज शायर है अपनी दोस्त आरजी शाहिन दिना। लो जी अगला जिहड़ा सानू मैसेज आया है बहुत वड्डा इन्होंने जिहड़ा लिख के सानू भेजिया है लिखिया है सानू मैसेज ये जिहड़ा भेजा गया भुपिंदर सिंह पिंड चीचा अमृतसर तो। मैडम जी रचना सारी पढ़ियो जी ता ही रचना विच संदेश का पता चलता है। रचना मेरा पैगाम तेरे नाम रचना का जिहड़ा नाम है भुपिंदर जी दी उसका नाम है जी मेरा पैगाम तेरे नाम लिखते ने तू खुश रहा कर कोई गल दिल ते ना लाई कि तू खुश रहा कर कोई गल दिल ते ना लाई कई बारी खुश जांदी है कोई चीज़ हाथ विच आई इसलिए चिंता दे विच ना अपनी जान सुकने पाई भुपिंदर सिंह तेनू प्यार करदा रहेगा मरते दम तक क्योंकि हालात ने अपनी विच दूरी पाई नहीं तो मैं तेनू मिलना सी आ के चाई चाई तू तो मेरे लिए है रब दे न्याई मैं तो जान छिड़कदा अपनी तेरे ताई तेरे मेरे विच कोई गलती नहीं है कोई जे हो भी जाती हाँ प्यार विच फर्क पैंदा नहीं कोई क्योंकि प्यार विच हर गलती हुंदी है माफ भुपिंदर सिंह दा दिल तेरे प्रति पूरा साफ आपे रब सच्चा करवाउंदा मिलाप है उसदे हथ विच सब दा हिसाब किताब है भुपिंदर सिंह तेनू मिलन लई रहिंदा बेताब है करदा रहिंदा हर वेले तेरे नाम दा जाप है इसलिए कदे कोई चिंता नहीं करना सोच सोच के आपा चिंता विच नहीं मरना मेरा मैसेज पूरा जी तुसी पढ़ना नहीं तो ला देना मैं स्टूडियो मूहरे धरना नहीं नहीं भुपिंदर जी स्टूडियो दे मूहरे तुहानू ना धरना लाने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुहाडा जिहड़ा मैसेज है मैं पूरा पढ़ लिया तो बहुत सोहनी जिहड़ी तुसी इह लाइनस ने साडे नाल सांझा कीती है जो असी किसी नू प्यार करते हैं ना तो उसकी हर छोटी तो छोटी चीज़ आप नोटिस करते हैं कि कदों वो टेंशन दे विच है कदों वो चिंता कर रहे हैं या फिर उसने कोई प्रॉब्लम हैगी है तो उसका सल्यूशन बन के आप उसके कोल जाते हैं तो इन्होंने जी लाइन साढ़े नाल सांझा की है ना ये वो अपने महबूब लई या फिर अपनी जिसनों भी प्यार करते हैं क्लोज वन वो जी लाइनस ने जिहड़ा प्यार हैगा वो प्रॉपर पता लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भुपिंदर जी सानू मैसेज भेजन वास्ते दिलाज शायर प्रोग्राम दे विच। अगला मैसेज आया जी बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिखते ने एक लाइन दो तीन चार लाइनस इन्होंने सानू भेजिया ने लिखते ने हम चाहकर भी साबित नहीं कर पाएंगे कि कितनी मोहब्बत है तुमसे कि हम चाहकर भी साबित नहीं कर पाएंगे कि कितनी मोहब्बत है तुमसे क्योंकि सच्चा प्यार साबित नहीं होता महसूस किया जाता है। बिल्कुल जो सच्चा प्यार आप किसी नू करते हैं ना ये कोई सानू करता है तो सानू ना वो फीलिंग्स आ जाती है सानू महसूस होता है कि हाँ सामने वाले दे दिल विच साढ़े वास्ते कुछ कुछ है कुछ कुछ होता है।

कभी तो मेरी धड़कनों में आ जाना, कभी जो सो ना पाओ मेरी यादों में तो मेरी रातों में आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर जी, सानू मैसेज भेजन वास्ते। लो जी, राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चलिया सुल्तानपुर लोधी तो सानू मैसेज ते मैसेज जना भेज रहे ने। इन्होंने लिखा है जी, हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, क्या खबर अंदर है वो किस कदर टूटा हुआ। कि हादसों के शहर में फिरता है जो हंसता हुआ, क्या खबर अंदर से कितना है टूटा हुआ। सूरत बदल गई है तो हैरत ना कीजिए, हम हादसों के शहर में रहते हैं दोस्तों। ये सानू मैसेज राम स्वरूप जी ने भेजा है जी। अगला इन्होंने एक होर सानू मैसेज भेजा है, लिखा है, कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते। वाह, कि कोशिश दोनों तरफ से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, एक तरफा कोशिशों में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते, जहां हो प्यार और सम्मान वहां मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, जहां लहजे में बस बेरुखी हो वहां खामोश हो जाते हैं रिश्ते। बिल्कुल, ये जोड़ी शायरी इन्होंने साढ़े नाल साझा की, अजकल दी रियलिटी हैगी है, जदों किसी भी रिश्ते दे विच, रिलेशनशिप दे विच कोई बहुत ज़्यादा बेरुखी दे नाल गल करदा है, गुस्से दे विच गल करदा है, तो अक्सर सामने वाला जिहड़ा परसन है ना वो खामोश हो जाता है। वो एक बार समझाता है, दो बार समझाता है, तीन बार समझाता है, पर समझाने की भी एक हद होंदी है, समझने की भी एक हद होंदी है। तो जदों उन्हें पता लग जाता है कि सामने वाला हैगा है जिहड़ा परसन है सामने, वो समझन नूं तैयार ही नहीं है, तो एक टाइम इदा आता है कि वह परसन बिल्कुल खामोश हो जाता है, तो जस्ट गो विद फ्लो दे नाल वो चलता रहता है कि हाँ कोई गल नहीं, रिलेशनशिप हैगा ठीक है, आप बैठते हैं, खाते हैं, घूमन जाते हैं, बट वो जिहड़े दिल ते गल्लां ने जिहड़ी शेयर करते सी पहला, वो किते ना किते जिहड़ी हैगी है गायब हो जाती है रिश्ते दे विच। इकबाल सिंह चौहान अमृतसर तो सानू मैसेज आया है जी। इकबाल जी ने किया, लिखते ने, मुस्कुराहट का कोई मेल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मेल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तालमेल नहीं होता, कि कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। लो जी, बड़े शायराना अंदाज दे विच इन्होंने शायरी साढ़े नाल जिहड़ी सांझी कीती है कि वैसे तो सानू टैंपरेरी जिहड़े लोग ने कदे ना कदे किसी मोड़ ते किसी सड़क ते सानू मिल जांदे ने, पर उहनां विचों कोई ना कोई इदां दा परसन हुंदा है जिहड़ा कि साडी जिंदगी दे विच साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी हो जांदा है, बिल्कुल अनमोल, किसी हीरे वांग, अनमोल चीज वांग। बहुत बहुत धन्यवाद जी जिन्हें भी लिसनर्स ने, साढ़े दोस्तों ने सानू हजे तक मैसेज किया है द लाज शायर प्रोग्राम दे विच। हाँ जी जी, किरण जी ने सानू 2:13 पर मैसेज किया जी। ओहो, इन्हों का मैसेज हूँ पढ़ रही हूँ मैं, लिखते नहीं, FM द लाज शायर है, RJ शाहीन मैडम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मोहब्बत का रंग बड़ा हसीन होता है, कि मोहब्बत का रंग बड़ा हसीन होता है, जिसे मिल जाए वो दिल के करीब होता है, और जिसका इंतज़ार हो वो सबसे अजीज होता है। असी इंतज़ार भी उस इंसान का करते हैं, उस परसन का करते हैं जिहड़ा कि साढ़े दिल के बहुत करीब होंगे, सानू बहुत ज़्यादा अजीज होंगे, उदे विच साढ़े फैमिली मैंबर भी आ सकते हैं, साढ़े दोस्त भी आ सकते हैं, वो खूबसूरत पल भी आ सकते हैं जिस पल दे विच आपां किसी नू मिलते हैं, किसी का इंतज़ार करते हैं। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद सानू मैसेज भेजने वास्ते। ग्रीन पार्क कपूरथला तो इन्होंने सानू मैसेज भेजे है। इदा ही तुहाडे जिहड़े मैसेजेस ने वह प्रोग्राम द लाज शायर दे विच मैं शेयर करती रहांगी। 2:35 हो गए ने, तो फटाफट सानू जिहड़े दोस्त अजे भी प्रोग्राम सुन रहे ने या फिर इस टाइम उन्होंने सुनना शुरू किया है द लाज शायर प्रोग्राम दे विच, तुसीं सानू अपनी लिखी हुई शायरी भेज सकते हो शायराना अंदाज दे विच। साडा नंबर है वट्सएप नंबर 9855101027, 9855101027। इत्थे तुसी सानू मैसेज भेजना है अपना नाम लिख के कि इत्थे तुसी सानू मैसेज किया है।

मेंशन करके। लो जी अगला तुसी सुनो, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान, जगजीत ते चित्रा जी दी आवाज़ दे विच गज़ल।

काश थोड़ा प्यार जता दूं क्या, कि आज थोड़ा प्यार जता दूं क्या, तुम मेरे हो सबको बता दूं क्या। तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, कि तेरी कलाई जो पकड़ लूं मैं, हाय मेरी जान गवा दूं क्या। मेरा कमरा बहुत उदास है, कि मेरा कमरा बहुत उदास है, तेरी एक तस्वीर लगा दूं क्या। तुम्हें लिखने में दिन चला जाएगा, कि तुम्हें लिखने में दिन चला जाएगा, तुम्हें सोचने में रात बिता दूं क्या। दूसरी ट्यून की तो हुई 102.7 मेगाहर्ट्ज ते प्रोग्राम चल रहे हैं जी, दिल आज शायर है। एंजॉय तुसी कर रहे हो अपनी दोस्त आरजी शाहीन दे नाल। सानू एक मैसेज आया है जी, डेविड समीर, कोमल, राजीव, राघव, नैन्सी, गुड ईवनिंग। पहला तो जनाब लिख रहे ने गुड ईवनिंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। पूरी फैमिली का नाम इन्होंने मैनशन किया है। तो लास्ट द फिरोजपुर तो ये सानू मैसेज आया है, लास्ट के इन्होंने लिखा एनी सोंग। डेविड जी, समीर जी, कोमल, राजीव, राघव, नैन्सी, जो भी इन्हां विच्चों साडा प्रोग्राम सुन रहे ने, दलाज शायर है, तो साडे प्रोग्राम दे विच तुसी सानू शायरी भेज सकते हो। तुहाडी जिहड़ी शायरी हैगी उह आपां शामिल करदे हां। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम हाँ, तुसी 4 बजे तो 5 बजे तक हैलो जलंधर जिहड़ा है फरमाइशी प्लस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, उहदे विच तुसी सानू मैसेज करियो। फिलहाल जे तुसी सानू कोई शायरी भेजना चाहुंदे हो साडे इस प्रोग्राम दे विच, तां लो जी मोस्ट वेलकम है, फटाफट सानू शायरी भेज दो प्रोग्राम दे विच। अगला सानू आया है जी लोहा बाजार मलेरकोटला, राकेश कुमार लिखदे ने, हर किसी नू अपना दर्द सुनाउणा छड दित्ता। बड़े दर्द दे नाल इन्हां ने सानू मैसेज कीता, हर किसी नूं अपना दर्द सुनाउणा छड दित्ता, असीं हुण लोकां ते उम्मीद लगाना छड दित्ता, जदों सानूं पता लगेगा साडे रोण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा तां असीं उहनां कोल रोणा छड दित्ता। हाय क्यों इन्ना उदास रहिंदे हो तुसीं, क्यों इन्ने उदास रहिंदे हो। मैं कहिंदी आ कि जे किसी नूं नहीं फर्क पैंदा ना तुहाडे रोण नाल, तुहाडे हसन नाल, तो की जरूरत हैगी, की लोड़ हैगी कि आप खुद उस परसन को जाइए तो अपना जिहड़ा दुख हैगा वो उस दे नाल सांझा करिए। मैंने लगता है कि साड़ी जिहड़ी फैमिली हैगी है, साड़े जिहड़े पेरेंट्स ने, साड़े भैन भरा ने, बहुत मैंने लगता है वो इनफ ने। जे कोई इदा दी प्रॉब्लम हैगी है तो आपां उहदा उहनां दे नाल सांझा कर सकते हैं। तो सब तो जिहड़ी वड्डी गल हैगी कि साड़े जिहड़े मैंटोर ने, साडे मैंटोर, साडे जिहड़े वड्डे ने, जिहड़े टीचर्स ने, सानू सिखाउंदे ने, साडी जिहड़ी गलतियां ने सानू दसदे ने। जे कोई इदां दी गल हैगी है कि तुहाडे कोल कोई भी नहीं है शेयर करन वास्ते, ते तुसी अपनी मैंटोर नू अपनी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी उह दस सकदे हो, शेयर कर सकदे हो। देखो उहनां ने जज नहीं करना, बहुत रेयर हुंदा है कि कई लोकां दी मैंटैलिटी इदां दी हुंदी है कि उह जज करदे ने, पर हर कोई जज नहीं करदा। तो उदास रहना छड़ दो, बस जिंदगी नू इंजॉय करो। किन्नी की जिंदगी है, अद्धी साड़ी लंघ गई है जिंदगी, अद्धी रह गई है। तो हस के खेड के सारियां नू खुश रख के, अपने आप नू खुश रख के, सानू ये जिंदगी जड़ी है कि ये जीनी चाहिए है। इकबाल जी ने

ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। धीरे धीरे मेरे दिल में कुछ यूं बस गए हो कि धीरे धीरे मेरे दिल में कुछ यूं बस गए हो तुम कि मेरी हसरत मेरी चाहत मेरी मोहब्बत बन गए हो तुम। अब लगता नहीं है ये मन कहीं भी तुम्हारे बिना कि मेरा सुकून मेरी आदत मेरी ज़रूरत बन गए हो तुम।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हीट इमरजेंसीज। इस प्रचंड गर्मी में कैसे

0: से करें खुद का बचाव, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आप नंबर डायल करिए और इधर मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद बहुत
0: जी। सर आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि हीट इमरजेंसीज या गर्मी से संबंधित आपात स्थिति क्या होती है?
1: इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी छोटी मोटी घमौरियों से लेके या पैरों में सूजन से लेकर के
0: जी।
1: एक जो हीट स्ट्रोक तक ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हीट रिलेटेड इमरजेंसीज आ सकती हैं, लेकिन छोटी मोटी जो घमौरियाँ होती हैं उसमें तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है ये काफ़ी ही संगीन है और इसमें मोर्टेलिटी 50-70% तक हो सकती है इलाज मिलने के बावजूद।
0: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि संगीन, ये शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पे बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जुड़ जाती हैं। आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: सर, ये हिदायत तो हमने सुन ली और बाकी हिदायतें अब आपसे लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून
0: जी।
1: सर,
0: गुड आफ्टरनून सर, नाम बताएं अपना।
1: आई एम कुंवर सिंह फ्रॉम दिल्ली।
0: जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताएं अपना।
1: सर, आई वांट टू नो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एज दिल्ली इट इज इन पीक टाइम नाउअडेज, व्हाट होमली प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक। सेकेंडली, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हिच ए ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट।
2: थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो यह है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ ये मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी गफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं और वो कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106, 107, 108, 109 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर साथ में गफलियत में और अनाप शनाप बकना और प्री कोमा या कोमा में होना या फिर बेहोश होना और या फिर दौरे पड़ना, ये सब चीज़ को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। तो ज़्यादातर ऐसे समय पे ये डायग्नोसिस बनता है जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव की स्थिति में, ऐसे गर्मी के वो मौसम में बनाया जाता है ये हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस। और इसमें बचाव के जो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, छाती जो छतरी होती है वो ले सकते हैं आप, और साथ में कुछ पानी ओआरएस या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए, अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकलिए, और ज़्यादा कम से कम समय में अपना काम करके छांव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर उसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग, जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या पुलिसकर्मी हैं, ये लोग को विवश होते हैं इनको, तो ये लोग भी छाए में ज़्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें, और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें। और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज़ कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। और जहाँ तक कि बॉडी का सवाल है, एक्लेमेटाइज़ धीरे धीरे होता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए आप

0: देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम भी होती है। तो अगर आप जैसे मान लो कहीं से ठंड इलाके से एकदम से गर्मी वाले इलाके में आते हैं तो आप एक्लेमेटाइज नहीं हैं, आपका शरीर जो है वो तैयार नहीं है हीट को सहने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में वो झेल नहीं पाता है, हीट स्ट्रोक ऐसे लोगों को बहुत होता है। मान लो जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और फिर आप 2 हफ्ते वहाँ या 3 हफ्ते वहाँ से वापस आते हैं, तो अगेन आप डी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, यानी कि आप जो पहले एक्लेमेटाइज हो रहे थे हीट को सहने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति डी एक्लेमेटाइज होता है, फिर वापस आता है तो हीट में उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने हीट वेव की चर्चा की थी, क्या किस तरह से माना जाता है कि ये हीट वेव है?
0: हाँ, देखिए अलग अलग इसके वो हैं प्रमाण होते हैं। जैसे कि प्लेन की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तापमान, ड्राई टेम्परेचर जो है, और 2 दिन तक लगातार रहता है और 2 स्टेशंस में मेजर होता है, तो इसको हम घोषणा कर देते हैं हीट स्ट्रोक, हीट वेव है। और सिवियर हीट वेव होता है जब 47 से ज़्यादा लगातार 2 दिन तक 2 स्टेशंस में हम मेजर करते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये, और या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब 4.5 से 6.4 तक, अगर वो ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा है, टेम्परेचर डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है।
1: जी, अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
0: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं या कोई और सिम्टम शो करते हैं, तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं है या बिल्कुल ही बेहोश है। ऐसे में पैर ऊपर कर दें थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर वो होश में है, बातचीत कर रहे हैं, तो पानी दें उनको पीने के लिए, अगर ORS है तो ORS दे दीजिए, नहीं तो वैसे पानी दे सकते हैं। अगर बेहोश हैं तो फिर पानी देने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको पानी डालें, छिड़काव करें, या गीला कपड़ा, हाँ गीला नहीं नहीं पूरे बॉडी पे आप डाल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, छाती पे भी और पेट पे भी डाल सकते हैं, फेस पे भी डाल सकते हैं, और पंखा करें खूब, है ना, काफ़ी उससे पंखा करें तो ताकि टेम्परेचर कम कर सकें, और उसको जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा सीरियस लग रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, गफलियत में जा रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एकदम से हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी हो जाता
1: है। जी डॉक्टर साहब, आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं सर, क्या सवाल है?
2: मेरा कहना है कि जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे दिल्ली NCR में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में,
1: जी
2: सड़क पर जो शरबत पानी की व्यवस्था की जाती है और उसमें बड़ी मात्रा में शुगर डालते हैं और कलर भी डालते हैं, तो मेरा पूछना है कि, और वो बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पीजिए, तो मेरा पूछना है कि क्या वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, कैसे पता लगाए?
0: जी धन्यवाद। ये हाइजीनिक है नहीं हाइजीनिक है, ये तो उसकी जांच करके ही पता लगेगा। बाकी ये अगर वो कलर्स डाल रहे हैं और उस और तरह की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ठंडाई तो दूध में भी बनाते हैं, दूध में पानी मिला के, अगर पानी साफ़ सुथरा है तो पिया जा सकता है, काफ़ी लोग पीते भी हैं उसको, और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है लोगों को। तो ये तो एक सेवा भाव से किया जाता है और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छे वो लोग जो होते हैं इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी वो नहीं रहता कि भाई किसी को दिक्कत आए ऐसे।
1: हाँ, अगर कोई संशय है तो साथ में लेकर चलें, आपने बताया ये कि चीज़ें साथ में रखें और बाकी क्या प्रिकॉशंस हैं आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, ये है देवदूत पर सौलिया, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से, लिख रहे हैं नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी

0: बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल होता तो और भी अच्छा लगता, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया हुआ है ये है तपोष प्रमाणिक जी पथूरिया बोंगा पश्चिम बंगाल से। डज होल्डिंग ऑनियंस इन योर हैंड रिड्यूस द चांस ऑफ हीट स्ट्रोक, इनका सवाल है।
1: नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर उसको आप हाथ में रखेंगे, या कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं अनियन को या प्याज को, तो आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये गलत धारणा है। बल्कि आप अगर पानी पियेंगे और तरल पदार्थ लेंगे और अल्कोहल और अदर बेवरेजेस, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, वो कम लेंगे, टी कॉफ़ी कम लेंगे, और जैसे हम अभी नारियल पानी की गाना चल रहा था,
0: हाँ,
1: नारियल पानी या छाछ है, ठंडाई है, या ORS घोल के भी आप, या सिर्फ सिंपल पानी ही और नमक डाल के उसमें नींबू डाल के मिला के आप अपना घर में भी एक नींबू पानी बना सकते हैं, लेमनेड। तो ये चीज़ कैरी करेंगे तो आपको, क्योंकि पसीने में सोडियम सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्ट और वाटर का सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर धूप में निकल रहे हैं तो कुछ खा कर ही निकलें, ऐसा भी सच है?
1: हाँ जी बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता है, धूप में एकदम से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके बॉडी की एनर्जी वो तोड़ने लग जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी कि शुगर आपका ब्लड में बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर कुछ खा के चलेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी, आपके बॉडी को एनर्जी मिलता रहेगा आपके खाने से, नहीं तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको दिक्कत हो सकती है।
0: जी, तो बहुत सारी हिदायतें हैं हमारे पास और लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, हालांकि हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं। रेडियो डॉक्टर के संचालनकर्ता एवं चिकित्सक जी को मेरा प्रणाम। कृपया गर्मी के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए एवं किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करें। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट जी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से।
1: जी, अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमें लिक्विड की बात है, उसमें हमें खास करके अपने जो नॉन बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी कोला, ये सब जो होते हैं कोका कोला या फेंटा और ये सब की, या फिर अल्कोहल हो गया, है ना, इनकी सेवन कम करना चाहिए, बियर हो गया। तो इसके अलावा जैसे कि आप आजकल जगह जगह पे आप देखते हैं वाटरमेलन के फ्रूट्स भी मिलते हैं, या फिर खीरा काट के लोग बेचते हैं, वो सब भी आप, जैसे उसमें भी काफ़ी पानी होता है और काफ़ी ठंडा होता है, और पानी भी पीते रहें, ORS पीते रहें, ये सब आप करेंगे तो टी कॉफ़ी आपको कम करना पड़ेगा ऐसे गर्मी के मौसम में।
0: जी, अगला सवाल हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से लिख रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते, वहाँ गर्मी होती है, उनको कैसे बचाएं? स्कूल से आते हैं तो बहुत घबराए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ ज़रूरी है?
1: जी देखिए, स्कूल में भी डायरेक्शंस जाते हैं, स्कूल्स में भी एवरी या तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठा सकती है वहाँ स्कूलों में, कि बच्चों को हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक दिया जाए, सबको बोला जाए कि पानी पीना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, थर्स्टी होते हैं तभी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं तभी पानी पीते हैं, नियमित तौर से पानी नहीं पीते हैं। तो एक वो चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं आप, जैसे वाटर मेलन है या कुकुम्बर हैं या और अन्य जो फ्रूट्स जिसमें वाटर होता है, वो वाले आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। एक फ्रूट ब्रेक और वाटर ब्रेक का जो एक गर्मी में, मेरे ख्याल से हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक तो लेना ही चाहिए। तो ऐसे चीज़ें करके गर्मी के प्रकोप से आप बच सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे और भी होनी बाकी हैं, लगातार हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कौन सा गीत सुनवाया जाए? गेंदा

0: सकते हैं, और अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खान पान कैसा हो, बच्चों के बारे में हमने चर्चा की। खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई गर्मी से घर के अंदर आता है तो तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है, तो क्या सही होता है, चाय कॉफ़ी का सेवन किया जाए या ठंडी चीज़ें ली जा सकती हैं?
1: जी, एकदम से गर्मी से आके एकदम से बिल्कुल ठंडा चिल्ड कोल्ड और आइस वाला ड्रिंक इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गला ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और ख़ास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन उसमें काफ़ी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया, नींबू पानी है, या फिर अभी नारियल का पानी की बात हो रही थी, तो ये सारे जो रूह अफज़ा भी लोग पीते हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना हो, और जैसे कि ये कॉफ़ी और चाय या फिर अल्कोहल, इनसे भी बचना चाहिए, खास करके गर्मी में, ताकि क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा यूरिन ज़्यादा बनता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं,
0: होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा ये बच के रहना है। श्रोताओं, आपको हमारे अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं सर।
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब?
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: सर मुझे पूछना ये है कि जो ये ORS होता है, जो बीपी के मरीज या शुगर के मरीज हैं वो इसको ले सकते हैं?
1: हाँ जी, ले सकते हैं इसको। ORS जो है इसमें, क्योंकि गर्मी में खास कर क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, साथ में सॉल्ट भी लॉस हो रहा है आपके पसीनों में, तो ये ORS जो होता है ये आप ले सकते हैं एज अ, लेकिन जो खास करके जो जिनको हार्ट की बीमारी है, या फिर कुछ लोग जिनको बोला गया कि भाई सॉल्ट ज़्यादा नहीं लेना है, ऑल्दो इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट तो होता ही है, और शुगर होता है इसमें, और वाटर होता है, तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। खास करके कुछ एल्डरली होते हैं जो सॉल्ट का जो ऊपर नीचे से उनको दिमाग में गफलियत में जाने लग जाते हैं, तो उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये लेने में कोई इशू नहीं है। ORS आप ले सकते हैं, और घर में भी आप ORS बना सकते हैं, जैसे कि एक लीटर में आपने चम्मच दो चम्मच चीनी डाल के नमक, उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, तो इस तरह से भी आप, या फिर नींबू पानी भी आजकल लोग पीते हैं, छाछ पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, या नारियल पानी, ये इस तरह के जो सेवन है आप इसको भी कर सकते हैं ORS की जगह।
0: जी डॉक्टर साहब, किन किन लोगों को हाई रिस्क हो सकता है इस मौसम में?
1: हाई रिस्क में देखिए, सबसे छोटे बच्चे हैं, या एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, और फिर उनको वहाँ पे वर्जिश, वो मतलब उनका काम ऐसा है कि उनको कसरत मतलब, या फिर उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं, या फिर जो वेंडर्स हैं, या फिर जो लेबरर्स क्लास हैं, या पुलिसकर्मी भी आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी गर्मी में उनको ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो ये लोग काफ़ी इनको चांसेस हाई रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, बेघर होते हैं, ये लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं। और एल्डरली की बात करें तो एल्डरली तो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर में हैं, तो भी उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिंस ले रहे होते हैं जिससे वैसे ही डिहाइड्रेशन में होते हैं, और थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनको दिक्कत आ सकती है, खास करके जो एल्डरली हैं, जो खुद नहीं चल सकते, पानी नहीं ले सकते, या बेड रिडन हैं, ऐसे लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं, क्योंकि इनको किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं सकते उनका डिहाइड्रेशन क्या, उनको कब प्यास लग रही है, या उनको डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, वो सब वो अपना जो है वो बता नहीं पाते। तो ऐसे में

0: वो भी बड़ी जल्दी ही, उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा डिक्रीज होते ही या कभी लूज मोशन वॉमिटिंग हो गया
1: जी,
0: तो ऐसे में तुरंत वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है, जिसको डॉक्टर साहब आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है सतीश कुमार जी का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी में हमको कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके?
0: देखिए ड्राई फ्रूट्स तो कभी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको इनफ वाटर ले रहे हैं ताकि वो, और ज़्यादा चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर नियमित तौर से आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, आपके रूटीन में बना हुआ है, तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको डाइजेशन के लिए उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसको वाटर लें, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में पानी का ख्याल रखें
1: जी। अगला सवाल मैसेज के रूप में हमारे पास है संजय एम जोशी जी का, पुणे से लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप सेफ मोबाइल इन हीट वेव्स कंडीशन एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग हॉट।
0: जी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम चालू रखते हैं अपने फ़ोन में, और ये अच्छा कि आपको फ़ोन हेल्थ के बारे में भी आपको चिंता है। ऑफ कोर्स इस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, ख़ास करके एसी, आप देखेंगे एसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, फायर के इंसिडेंट्स आते हैं कि एसी में आग लग गया, क्योंकि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और अंदर वो कूल कर रहा है, और तो ऐसे में उसकी जो तार है, वायर्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ़ोन भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या जैसे मान लो डैशबोर्ड पे रख दिया, आपने कार चला रहे हैं डैशबोर्ड पे रख दिया, डैशबोर्ड पे धूप आ रही है सीधा, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सबसे यह है कि आप उसको कूल रखें, ठंडे छाँव में रखें, तो वो गर्म, और ज़्यादा यूज़ करने से भी वो गर्म होते हैं, तो एप्लीकेशन सारे बंद कर दें जैसे, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फ़ोन अपने आप ही विदाउट यूज़, तो फिर उसको दिखाना की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी से रिलेटेड।
1: जी हालांकि देखिए ये थोड़ा सा विषय से हटकर था लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, क्योंकि ये तो आपने मोबाइल की जो सुरक्षा थी वो पूछ ली है, और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मोबाइल की भी सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो कि आपने सवाल किया और जागरूक किया है हमारे श्रोताओं को भी। बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं मैसेजेस, वो लिख रहे हैं हमारे श्रोता के कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं के कॉम्प्लिकेशंस हैं हीट की वजह से, अगर वो देर से होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए?
0: जी कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये मैंने बताया कॉन्टिन्यूम है ये, अगर आप इसको अर्ली पहचान लेंगे तो अर्ली इलाज हो जाएगा, अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं या आप इसको पहचान नहीं पाते हैं तो फिर ये भयावक रूप ले लेते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में ही सीधा प्रेजेंट होगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि मान लो किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं हीट में, काफ़ी लोगों को ना नसें चढ़ जाती हैं, जैसे मसल्स में, जैसे आर्म्स में या लेग्स में, एकदम से बैठे बैठे या चलते हुए या थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो मसल क्रैम्प हो गया, जिसको हम नस चढ़ना भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी कि आपका बॉडी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये पहचानना ज़रूरी है। फिर यूरिन का जैसे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। जब भी आप यूरिन जाएं तो ज़रूर अपना कलर देखें यूरिन का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे कि आपको, और उसके तुरंत बाद यूरिन करके आए तो ज़रूर पानी पिए अगर वो डार्क है ना। या एक आजकल क्या है, एक और होता है कि ग्लास, जो ठंड में जो ग्लास रखते हैं वो छोटा रखते हैं या वो नॉर्मल होता है, लेकिन गर्मी में वो बड़ा ग्लास रखें ताकि जब भी आप पानी पिए तो कम से कम डेढ़ गिलास या दो गिलास पानी पिए, तो एक बार में आपका
1: क्वांटिटी भी सर कुछ होनी ज़रूरी है कि एक लीटर पिए या दो लीटर पिए, या कुछ रोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि जिनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो ऐसे लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी?
0: हाँ देखिए, जो जिनको पानी बोला जाता है, जैसे किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको सूजन पहले से ही है, हाँ। है ना, उनको सॉल्ट

0: अभी
1: पानी की
0: उनको
1: मात्रा
0: सॉल्ट
1: कम
0: भी
1: बताई
0: बोलते हैं
1: जाती है जी।
0: कि सॉल्ट भी उनको कम लेना है, और उनको बोला जाता है कि 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि आपको इनसेंसिबल लॉसेस भी, आपके इनसेंसिबल लॉसेस मतलब जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो सांस आप देखेंगे तो गर्म होता है सांस, तो उसमें भी आपके लॉसेस होते हैं, यूरिन में लॉस होता है, आपके स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, तो ये बढ़ जाता है गर्मी में। तो ऐसे में 1 लीटर के बजाय वो उसको 1.5 लीटर माना जाता है, 1.5 या 2 लीटर भी माना जाएगा। तो ऐसे में लोग जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अभी गर्मी है, जैसे मैं ठंड में तो 1 लीटर से कम ले रहा था लेकिन अभी गर्मी है, क्या मुझे 1 लीटर से कम ही लेना है या 2 लीटर तक मैं पानी ले सकता हूँ, ये अपने डॉक्टर से सलाह
1: परामर्श करके जी। डॉक्टर साहब, गर्मी जनित रोगों से और किस तरह की समस्या शरीर में हो सकती है, जैसे अगर गर्मी लग जाती है तो मतलब बाकी और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या उससे?
0: जी देखिए, मैंने बताया ना ये जो है पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है जो गर्मी है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे बात करें तो ब्रेन को इफेक्ट करता है ये, क्योंकि जो है जो आपका जो सोचने की क्षमता है, फिर इसमें मैंने बताया कि कोमा में चला जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेट में जैसे नौजिया वॉमिटिंग या उल्टियां आने लग जाती है, हार्ट में भी समस्या आ सकती हैं जैसे कि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा या एबनॉर्मल वे में जो रेगुलर बीट है वो रेगुलर बीट ना होकर इरेगुलर बीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी असर होता है, तो किडनी भी आपके शट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सोडियम का ऊपर नीचे होता है, ग्लूकोज आपका नीचे चला जाता है, तो इस तरह से फिर मांसपेशियों में जो होता है जकड़न होती है, ऐंठन हो जाती है, नस चढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको जो पूरे बॉडी में जो सेल्स
1: कभी कभी सर ये भी देखा जाता है कि सर्दी भी लोगों को लगने लगती है जब उनको लू लग जाती है, तो उसकी वजह से ये भी समस्या होती है, तो ये कैसे बचा जाए इन चीज़ों से?
0: जब अगर कंपन होने लग जाए आपको, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉडी और हीट बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये तब होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो लू लगते हैं उसको हम क्या करते हैं कि टब में, हॉस्पिटल में एक टब होता है उसमें हम ठंडा पानी 0 to 5 degrees centigrade में उसको आइस वाटर बाथ देते हैं
1: जी।
0: ताकि टेम्परेचर जो इनका जनरली 106, 107, 108 जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको तुरंत हम 102 तक ला सकें, जो कि हाफ एन आवर में हमें लेके आना होता है
1: जी।
0: तो ऐसे में अगर जैसे टेम्परेचर एकदम से नीचे ला रहे हैं तो उनको ठंड लगने की यानी कंपन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम एक दवा देते हैं, इंजेक्शन होता है मिडाजोलम, वो हम देते हैं ताकि उसका कंपन दूर हो जाए, और फिर हम उसको जैसे ही 102 तक आता है टेम्परेचर उसको हम टब से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसको नॉर्मल एयर ड्राई या स्प्रिंकलिंग और एयर ड्राई से हम उसको धीरे धीरे हम पहले हम तेज़ी से लाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई वगैरह हैं वो कंबल ओढ़ के भी गर्मी में इसलिए काम करते हैं कि उनको हीट वेव्स का असर ना हो, तो क्या कहीं ये ऐसा पहनावा ज़रूरी है कि अगर थोड़े भारी कपड़े पहने, जैसे कि हमने आपसे सुना कि हल्के कपड़े पहने, तो वो क्या रीज़न होता है?
0: देखिए, कभी भी डार्क गहरे रंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कंबल तो खैर आपका जो इवेपोरेशन है वो नहीं होने देगा, तो आपको क्या होता है कि ये बेसिकली आपको इवेपोरेशन होना चाहिए, यानी कि जो हीट है जब उसमें क्या होता है जो तापमान है आपके बॉडी का वो ठंडा तब होता है जब आपका जो भाप बनती है, आपका जो स्वेट है वो भाप बनता है, तो नीचे वो त्वचा को वो ठंडक पहुंचाता है। तो ऐसे कोई भी कपड़ा पहनेंगे जिससे कि बहुत थिक कपड़ा है या कंबल ओढ़ रखा या कुछ ऐसा है तो वो इवेपोरेशन आपका होगा नहीं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन से होता है और रेडिएशन से होता है हमारा, और कन्वेक्शन से भी होता है, जो एयर आती है ठंडा हमें लेके जाती है बॉडी का, और कंडक्शन से भी हीट लॉस होता है। तो ये चार मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो जो भाप बन के उड़ता है, जो हवा लगती है हमें उस पर, और जो जो रेडिएशन हीट का होता है यानी कि वो अपने आप ही वो बाहर निकल रहा है हीट, तो ये सारे जो कंडीशन से ही हमारा, तो ऐसे कंडीशन कोई भी सिस्टम अगर कोई भी चीज़ जो इनको रुकावट पैदा करती है तो वो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देती है
1: जी। तो श्रोताओं, आज हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी से किस तरह की समस्या हो सकती है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर बच्चे

0: हैं, घर में बुजुर्ग हैं, तो किस तरह की खास तौर पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और आप स्कूल गोइंग हैं तो भी आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ घंटे होते हैं जिनमें सावधान रहने की बड़ी ज़रूरत होती है, जो गर्मी का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, उससे बचें। डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बताया है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं। नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि हीट वेव्स का जो समय होता है जब डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ऐसे में पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर वो स्कूल गोइंग हैं तो किस तरह का उनका खान पान हो कि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके निकलें, या बीच में कुछ सावधानी रखने के तौर पर कुछ वो एनर्जिक चीज़ें ले सकें, ऐसा कुछ बताएं।
1: हाँ जी, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि तरल पदार्थ आप लें और कभी भी बिना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, आजकल एक के बजाय दो वाटर बॉटल आप दे सकते हैं, या पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा वाटर बॉटल दे सकते हैं। और ख़ास करके अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन हैं तो वहाँ पर भी ये, और वैसे भी उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता ही है कि बीच बीच में वो एक ऐसा वाटर ब्रेक करते हैं जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि पानी आपको कंपलसरी पीना है अपने उससे, और बच्चों को भी जब वो आएँ बच्चे वापस तो देखें कि कितना पानी पिया है, है ना। अगली बार आप लिख भी सकते हैं उनके जो उनकी कॉपी में या फिर उनका जो डायरी होता है उस पर आप लिख सकते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपस में मिलके टीचर से प्रिंसिपल से तो बच्चों का थोड़ा सा बिहेवियर, क्योंकि बच्चे तो कभी पानी पीते नहीं हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो ऐसे कंडीशन में, और जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े से जो हैं, वैसे भी आजकल जो स्कूल्स हैं आप देखते होंगे कि ठंड के कपड़े अलग होते हैं यूनिफॉर्म, और गर्मी के वो उसी हिसाब से गर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं। तो और जैसे छतरी मैंने बताया, छाता या कोई कैप, ये सब आप देखें
0: जरूर। हाँ, सावधानी के तौर पर साथ में रखें। आगे बहुत सारे आपसे सवाल हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार जी,
0: स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
2: जैसे सफर में जाते हैं तो ये बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पानी की जगह में, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की मांग करते हैं ठंड में और गर्मी में, तो और वो जो पानी की जो बोतलें मिलते हैं उनसे तो प्यास बुझती नहीं है, तो क्या ये ठीक है कोल्ड ड्रिंक?
1: हाँ जी, अभी हम एक आधा घंटे से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं ये अवॉइड करना है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़्यादा नहीं सेवन करना है, अगर एक आध बार है, लेकिन ये अगर पूरे तरह से आपने पानी को ही रिप्लेस कर दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक से, पेप्सी से, फेंटा से, या इस तरह के जो अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको बीच बीच में नॉर्मल पानी भी पीना है, आपको छाछ भी पी सकते हैं, ठंडा ही पी सकते हैं, आप ORS भी ले सकते हैं बीच में, तो ये सब चीज़ आपको नींबू का पानी जैसे हो गया ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ लेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये पूरी तरह से अवॉइड करें।
0: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा।
1: जी।

तो श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हीट इमरजेंसीज पर है कि गर्मी से आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर हो गई है तो कैसे सावधान होकर उसका उपचार करें। डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहा जाता है कि 107-108 तक

0: टेम्परेचर हो जाता है। कि आपके पास ऐसा कोई केस आया है और वो आपको लगा है कि क्यूरेबल रहा?
1: जी देखिए, इसमें 109 110 भी पहुंच जाता है। इतना हाई टेम्परेचर से क्या होता है, सारे बॉडी के सेल्स हैं डैमेज मोड में चले जाते हैं, सारे जो हीट के वजह से वो डैमेज होने लग जाते हैं। हमारे जो दिमाग में एक मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है जिसमें वो थर्मोस्टैट होता है हमारे पूरे बॉडी के हीट से रिलेटेड। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाएगा। जब पसीना आना बंद हो गया तो आपका टेम्परेचर बॉडी का एकदम से राइज होने लग जाता है। और हमने देखा है कि लास्ट ईयर ही 109.4 डिग्री सेंटीग्रेड का एक नौजवान जो कि स्लीपर क्लास में ट्रेन में एक पूरे 24 घंटे का सफ़र करके ऊपर वाली बर्थ पे सोता हुआ अकेला आया था, और जब दिल्ली में आया तो उसको उल्टियाँ होने लग गई और वो गफलियत में चला गया। जब हमारे पास आया तो वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बेहोशी हालत में था, और हमें उसको यहाँ तक कि उसको मशीन पे डालना पड़ा, और तुरंत हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए टब में डाल के उसका आइस कोल्ड वाटर
0: जी
1: में टब में उसको गर्दन से नीचे उसको हम गर्दन ऊपर रखते हैं और उसको हमने टेम्परेचर एकदम से कम किया, और वो दो हफ्ते तक रहा हमारे पास। लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा होके गया, चल के गया वापस।
0: तो मुझे लगता है कि जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा सा आशान्वित हो गए होंगे कि अगर ये समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह से ये माना जाए कि इस स्थिति में मेडिसिन सहायक हो सकती है?
1: देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है नहीं, बल्कि जबकि ये टेम्परेचर आपका 106.7-8.9 जा रहा है तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैरासीटामोल दे दें, तो ऐसा पैरासीटामोल देने से टेम्परेचर कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो गया है। थर्मोस्टेट जब तक काम करता रहता है, और आपको मान लो कोई पायरोजेंस है ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हीट स्ट्रोक में पैरासीटामोल काम नहीं करता है, और कोई भी मेडिसिन उसको टेम्परेचर को काम नीचे लाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हवा और पानी का छिड़काव, और जहाँ हो सके हीट स्ट्रोक में तो सिर्फ वो भी काम नहीं करता है। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो अगर आप सिर्फ हवा कर रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो फील्ड में ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो भी काम करना मतलब वो टेम्परेचर कम करता है नो डाउट, बट जितना जल्दी से हमें उसको टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर पाता है, उसमें बहुत समय लगता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है कि टब में उसको डाल के जो एक आइस वाटर बाथ जो होता है, अगर आपके पास आइस नहीं भी है तो भी आप ठंडे पानी में, अगर जैसे नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर वाला पानी है, ये गर्म टंकी का पानी नहीं होना चाहिए
0: जी।
1: तो ऐसे पानी में भी अगर आप डिप कर दें उसको, है ना, तो ये है कि भाई उसका जो नाक है मुंह है ऊपर रहना चाहिए, और उसको आप जैसे हॉस्पिटल में हम लोग का तो यही ट्रीटमेंट होता है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जैसे मान लो शिवरिंग होती है, मैंने बताया था कि मिडाजोलम में एक दवा होती है हम देते हैं, और जैसे अगर दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की हम दवा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो हम देते हैं
0: कंट्रोल के।
1: हाँ, तो इसका बस वही है कि आपको बचाव है, और ज़्यादा होने पे आप जैसे इसमें आईवी फ्रूट्स देते हैं हम लोग, या जो क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स सोडियम की कमी होती है और ये होता है, तो आईवी फ्रूट्स देते हैं। अगर शुगर कम है तो शुगर का हम उसका डेक्सट्रोज हम शुगर का ड्रिंक वो देते हैं,
0: ट्रीटमेंट दिया जाता है जी। हीट एग्जॉशन क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: देखिए, हीट एग्जॉशन एक वो स्थिति है जैसे इसमें जो थर्मोस्टेट है आपका, जैसे हीट स्ट्रोक में थर्मोस्टेट पूरा काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ी आना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है लेकिन आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गफलियत में की स्थिति में आप धीरे धीरे आप जाने लग गए हैं, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया है, है ना, लेकिन अभी भी आपको स्वेटिंग जारी है। स्वेटिंग हीट स्ट्रोक में बिल्कुल स्वेटिंग बंद हो जाता है ना, स्वेटिंग बंद हो जाएगा, और लेकिन हीट एग्जॉशन अभी जारी है, तो ये एक हीट स्ट्रोक से पहली वाली स्थिति है जहाँ पे आपको ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक के तरफ ले जाने वाली स्थिति में ये आप जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज करें हम लोग तो हीट स्ट्रोक पैदा नहीं होगा।

0: और हम इसको अच्छा रिस्पांस मतलब किसी को भी हम बचा सकते हैं।
1: जी, यानी समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं इस स्थिति में तो बचाया जा सकता है उस स्थिति को आने से जो कि बहुत ही भयावह हो सकती है। जैसा कि आपने
0: बिल्कुल
1: स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें डेथ तक हो जाती है, थोड़ा सा जागरूक कर दें
0: फिफ्टी टू
1: लोगों को।
0: सेवेंटी
1: जी
0: परसेंट मोर्टेलिटी है, यानी कि 100 में से 50 से 70 मरीज जो है डिस्पाइट
1: जान गंवा देते
0: एडिक्वेट
1: हैं।
0: ट्रीटमेंट, हाँ एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी, ये डाटा जो है वेस्टर्न का है, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है। इसलिए इसको स्ट्रोक कहा गया है, क्योंकि जो ऐसे आप ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसकी भी मोर्टेलिटी काफ़ी होती है,
1: जी
0: जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक कहा गया है इसको, है
1: जी
0: ना।
1: तो श्रोताओं, मैं समझ पा रही हूँ कि आप भी बहुत ही सचेत हो गए होंगे, क्योंकि बहुत हल्के में ना लें कि गर्मी का मौसम है, आप किसी तरह से भी निकल जाएं, आपको काम है, लेकिन आपको निकलना कैसे है ये डॉक्टर साहब ने आज आपको जागरूक किया है कि आपको किस स्थिति में निकलना है, क्या प्रिकॉशन लेके निकलना है। जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बड़े जागरूक रहना है। डॉक्टर साहब, और क्या कहना चाहेंगे आप?
0: एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि
1: अच्छा।
0: आप ना जैसे रेडियो सुनते रहे हैं, रेडियो पे जानकारी मिलते रहती है, हीट हीट वेव कब घोषणा हुई है, या न्यूज़पेपर में ये जानकारी, या सोशल मीडिया पे भी आजकल आ जाता है ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट, है ना। इस तरह से जैसे अभी आज सुबह ही मैं देख रहा था कि राजस्थान में अलर्ट है, तो इस तरह की जो अलर्ट आपने क्षेत्रीय अलर्ट है ना, उसको आप वो कर सकते हैं। सचेत ऐप है वो, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, जो सचेत ऐप है,
1: जी
0: वो भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आपको मौसम की जानकारी या कोई भी वार्निंग होता है तो वो आपको मिलता रहता है वहाँ से।
1: जी तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, और जीवन में इसको अपना लीजिए, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती हैं, आपको हर साल हम सचेत भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाह मत होइए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत गौर से सुना होगा और इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की हीट इमरजेंसीज पर। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है health@delhi.gmail.com। और अब आपसे बस इतना कहूँगी कि अब दीजिए इजाज़त, अनुराधा को नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। FM बैंड 102.7 MHz ते प्रोग्राम सुन रहे युववाणी सारे दोस्तां नूं स्वागत करदे हां इस प्रोग्राम दे विच। ते अज दा ये प्रोग्राम युववाणी लेके हाजिर ने तुहाडे दो दोस्त, यानी कि मैं तुहाडा दोस्त RJ शिक्षित ते मेरे नाल ने
1: RJ प्रिया।
0: ते दोस्तों, असीं उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोंगे ते नाल ही इस प्रोग्राम, यानी कि तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी नूं सुनण दे लई काफ़ी ज़्यादा बेताब होवोंगे।
1: जी बिल्कुल शिक्षित, मैनू लगता है अज ज़्यादा ही कुछ एक्साइटमेंट होने वाली है साढ़े जेडे लिसनर्स हैं उन्होंने, क्योंकि अज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अज कुछ खास सैलीब्रेशनस भी है। तो सब तो पहली सैलीब्रेशन जी असं अज कर जा रहे हैं, वो साढ़े अपने प्यारे पौद्या लिए कर जा रहे हैं, क्योंकि अज इंटरनेशनल प्लांट हैल्थ डे है।
0: सो दोस्तों, जेकर अज के दिन की गल करिए साडा इस दिन नूं मनाने दे लई एक खास मकसद है। खास मकसद दोस्तों इस तरह है कि सानू पता है कि साडे पूरे जिंदगी का

0: हाँ जी दोस्तों, एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम युववाणी। तो हुण वधन जा रहे हैं असी अपने अगले सैगमेंट चक दे इंडिया वल, जिस विच तुसी स्पोर्ट्स लवर जिहड़े ने साडे उह स्पोर्ट्स दी नवीं नवीं अपडेट सुणदे ने, ते असी गल्लां बातां करदे हां, थोड़ी जी टिप्पणी करदे हां खेडां बारे।
1: सो प्रिया, जेकर असी खेडां दी गल करिए ना दोस्तों, असी जानते हैं कि फिलहाल दे विच जिहड़े IPL मैचिज ने यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग दे मैचिज ने वह चल रहे ने, जिस दे विच वख-वख टीमां हिस्सा लै रही ने, ते वख-वख स्टेट्स दे विच वख-वख स्टेडियम्स दे उत्ते ये मैच खेडे जा रहे ने। ते जदों असी गल करते हैं IPL दी, तां सानू पहलां ना पहलां थोड़े 10 कु मैचां दे विच जिहड़ी पंजाब किंग्स दी परफॉर्मेंस है तां वह काफ़ी ज़्यादा वधिया देखण नू मिल रही सी। वह इस तरह क्योंकि पहले कुछ मैचिज दे विच पंजाब किंग सीगी पहले टेबल दे उत्ते, टेबल दी पहली पोजीशन दे उत्ते, पर जेकर असी कल दी गल करिए तां कल दी हार नू मिला के, जो कि हारी है दिल्ली तो, कल दी हार नू मिला के दोस्तों पंजाब कुल 4 मैचेस लगातार हार चुकी है, ते इस दे नाल ही टेबल ते भी पोजीशन दे विच उहनां नू गिरावट देखण नू मिली है।
0: बिल्कुल, अक्षर पटेल दे जिहड़े रन्स रह चुके ने उहनां करके हुण पंजाब किंग्स जिहड़ी है थोड़ा जिहा अपना डाउनफॉल दे वक्त आ चुकी है, पर मैनूं लगदा अगे परफॉर्मेंस वधेगी ते इंप्रूवमेंट दिखण नू मिलेगी।
1: देखो प्रिया, इंप्रूवमेंट करनी ही पएगी जेकर तुसी टेबल दे विच भी टिकना या फिर इस सीरीज़ दे विच भी टिकना चाहोगे, क्योंकि इन्नी वधिया परफॉर्मेंस दे बावजूद भी जेकर साडे फील्डर्स चंगी तरह फील्ड नहीं कर पा रहे या फिर जेहड़े साडे बॉलर्स ने उन्नी वधिया तरीके दे नाल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तां इस

0: हाँ जी दोस्तों, इसी दे नाल असीं वापस आ चुके हैं साडी चक दी इंडिया सैगमेंट दे विच, युववाणी प्रोग्राम विच। ते हुण साडी अगली खबर वल वधदे हां, जो कि आ रही है वेट लिफ्टिंग ते बॉक्सिंग दे मैदान तों। ते शिक्षित, तुहानूं की लगदा है अज दी नवीं अपडेट की हो सकदी है वेट लिफ्टिंग ते बॉक्सिंग दे मैदान तों?
1: देखो, सुनने दे विच आ रहे हैं कि जिहड़ी इंडिया है इस बार वेट लिफ्टिंग जिहड़ी चैंपियनशिप है ऑर्गेनाइज़ करेगा अते होस्ट भी करेगा दोस्तों। ते ए मैं दसदा, ये होस्ट इंडिया कर रहा है कुल 44 सालां दे विच पहली बार।
0: क्या बात है, मतलब बहुत वड्डी खबर है ते बहुत मान दी खबर है साडे सारयां लई। ते इस दे नाल ही भारत दी कोमल कोहर ने 48 किलो वर्ग विच कुल 177 किलो पार चुक के ब्रोंज दा तगमा जीत के देश दा मान वधाया है। ते उधर ताशकंद विच साडियां मुक्केबाज कुड़ियां ने कमाल ही कर दिता है। 6 मुक्केबाज अंडर फाइनल 15 विच पहुंच गईयां है।
1: ते प्रिया, असी जानते हैं कि जदों भी असी जैवलिन थ्रो की गल करते हैं तो नीरज चोपड़ा नाम का जेकर जिक्र ना हो तो मैं लगता है इंडियन स्पोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा अनजस्टिस रहेगा। तो दोस्तों, जदों असी नीरज चोपड़ा की गल करते हैं तो उन्होंने ही स्टूडेंट यानी कि सचिन यादव डेब्यू कर जा रहे हैं डायमंड लीग, जिहड़ा कि एक जैवलिन थ्रो कॉम्पीटिशन होंगे डायमंड लीग, उस डेब्यू करेंगे। हालांकि नीरज चोपड़ा आप इस बार नहीं खेडेंगे पर उन्होंने स्टूडेंट यानी कि सचिन यादव इस बार भाग जरूर लवेगा।
0: बहुत वड्डी गल है जो कि 4 जून नू रोम विच उन्होंने डायमंड लीग विच डेब्यू करना है। तो इस दे नाल ही फुटबॉल ते एथलेटिक्स दे मैदान विच भी भारत बहुत अगे वधदा जा रहा है। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम चीन दे सूजो विच क्वार्टर फाइनल विच मेज़बान चीन नाल ही लोहा लै रही है, जो कि बहुत वड्डी गल है। तो इस मान नू सेलिब्रेट करना चाहिए है, अपने दोस्तों के नाल एक प्यारा जिहा गीत सुन लेना चाहिए है।

प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू जिंदगी, तुसी बने हुए हो अपनी दोस्त आची शाहिन दे नाल। किसी ने बड़ी कमाल दी गल कही है, खोकर पानी का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। कई बार जदों असी कोई काम करते हैं अपना 100% देंदे हैं, कितने ना कितने कोई कमी रह जाती है, जिहड़ा रिजल्ट आता है असी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। कई बार इदा होंदा है कि असी डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपना राह बदल लेंदे हैं, गिवअप कर देंदे हैं, बट सानू ट्राई करते रहना चाहिए है। जो माड़ी मोटी कमी रह जाती है उसनों दूर करके उदो सानू फिर तो ट्राई करना चाहिए है। इदा दी जिहड़ी गल हैगी है ना, साडे सारिया दे विच इह हुंदा है, जदों आपां कोई भी काम करते हैं तो सानू रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सानू इदा लगता है कि हाँ जिंदगी दे विच जो असी करना सी हुण कर लिया, जे रिजल्ट नहीं सानू मिलिया जिंदगी विच करन नू होर कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन इदा दी कोई गल नहीं है, जिंदगी जदों तक साडे नाल हैगी है ना, बहुत इदा दियां जिहड़ियां चीज़ां ने आप ट्राई कर सकते हैं।

जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। कई बार जिंदगी च कुछ खोना पैंदा है, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई सपना, कोई गल, जो खो गया उसका गम नहीं मनाना चाहिए। कई बार असी अपनी खुशी किसी होर नाल तोलदे हां, पर हर किसी की जिंदगी अपनी खास है, अपनी एक कहानी है। अपनी कहानी नूं किसी होर दी कहानी दे नाल असी कंपेयर नहीं कर सकते। उम्मीद करती हाँ कि जिहड़ी जो भी साड़ी कोल हैगा साड़ी लई उस सारियां दे लई ओ लाजवाब होना चाहिए। जो नहीं है मन्या एक ख्वाब है, पर उस ख्वाब नूं किदां आपां पूरा करना है वो साड़े सारियां दे हत्थां दे विच है। असी कम करांगे क्योंकि 24 आवर्स सारियां नूं मिलदे ने। सारियां कोल दो हत्थ है, एक दिमाग हैगा सोचण वास्ते, दो अखां हैगियां देखण वास्ते, दो कन हैगे सुनन वास्ते। ते क्यों ना अपने जिहड़े ख्वाब ने उहनां नूं पूरा करन वास्ते असी आप ही मेहनत करिए, ना कि दूजियां दे नाल अपनी जिहड़ी जिंदगी है, अपनी कहानी है उसनूं कंपेयर करिए।

इस चीज़ का अफसोस करते हाँ कि साडे कोल जो चीज़ सी जां फिर सानू जो चाहिदी सी ओह सानू जदों नहीं मिलदी ते आपां सोचदे हाँ कि साडे किस्मत विच ये चीज़ नहीं लिखी। बट उस तो बाद जदों बहुत बेहतरीन चीज़ साडे लई लिखी होंदी है किस्मत दे विच ते सानू मिल भी जांदी उस टाइम सानू रियलाइज़ होंदा है कि हाँ जो होंदा है एट दी एंड चंगे लई ही होंदा है। ते बस ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो चीज़ साढ़े कोल हैगी है उदे विच सानू संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी सब तो टाइम सिर सानू मिल ही जाएगा।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलां च तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ भुला देवे।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

मुंबई आके नीरू बाजवा नूं कई मुश्किलां दा सामना करना पिया। पहली गल भाषा की समस्या, कनेडा दे विच वड्डी होण करके हिंदी उत्ते उसकी पकड़ बहुत घट सी। ऑडिशन दे दौरान कई बार रिजैक्शन भी हुई, फिर उस तो बाद पंजाबी होण दा टैग। बॉलीवुड विच उस समय पंजाबी एक्ट्रेसिस नूं ज़्यादा गंभीरता दे नाल नहीं लिया जांदा सी। कहा जांदा सी कि तुसीं सिर्फ पंजाबी रोलां दे लई ही ठीक हो, तुहाडे कोल हिंदी नहीं बोली जाणी। छोटे रोल शुरू विच उन्हां नूं टीवी सीरियल अते छोटे किरदार ही मिले। कई बार वो सिर्फ कुछ सीन्स दे लई ही स्क्रीन ते दिखाई दिंदे सी। डायलॉग होवे चाहे ना होवे, थोड़ी जी अपीयरेंस भी उस समय दे उत्ते बहुत मायने रखदी सी। फिर कई सालां तक कोई वड्डी फिल्म नहीं मिली ते ना ही कोई वड्डा ब्रेक, लेकिन साडी पंजाब दी शेरनी ने हिम्मत नहीं हारी। टीवी तो करियर की शुरुआत हुई। नीरू बाजवा ने टीवी शोज तो स्टार्टिंग पॉइंट तो शुरू कर लिया। कई हिंदी सीरियल्स दे विच नजर आई। बहुत पॉपुलर शो हुए जिवें कि अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, जीत, गन्स एंड रोजेज, हरी मिर्ची लाल मिर्ची। टीवी ने उन्हां नूं इंडस्ट्री दे विच पहचान तो दिती, पर फिर भी उड़ीक सीगी कि कदों बिग स्क्रीन, वड्डा पर्दा उत्ते मैं नजर आवांगी। करदे आ अगे गल के संघर्ष भरी दास्तान किदां दी रही, लेकिन सुनदे आ मन्नत नूर दी आवाज़ दे विच लौंग लाची फिल्म दा ए गीत।

ते पेश है तुहाडे सामने इस पूरे आर दा प्रोग्राम जिसका नाम है रंगला पंजाब। सब तो पहला इस हाफ एन आवर दे विच गल करांगे लुड्डी दे बारे। मेरे नाल एक बहुत ही विशेष मेहमान भी जुड़नगे जिहड़े कि लुड्डी दे उत्ते चानना पाउणगे। तुसी सुनना ना भुलना उहनां दे नाल मेरी वार्तालाप। फिर उस तो बाद ठीक 8:30 तो 9 बजे गल करांगे संगरूर दे बारे भी। जिहड़े संगरूर तो ने उहनां नूं तां स्पैशली पता ही है कि हाँ जी कि की स्पैशैलिटी है, या फिर उहनां दा बचपन उत्थे पलिया, या फिर कईआं नूं नहीं पता कि घूमणगे कि टूर करनगे ने, गलबात दी 8:30 तो बाद होवेगी। लेकिन हुण गल करदे आ लुड्डी दी। लुड्डी पंजाब दा एक प्रसिद्ध लोक नाच है जो खुशी, जित ते उत्साह दा प्रतीक मन्निया जांदा है। इह नाच मुख तौर दे उत्ते मर्दां दे वल्लों कीता जांदा सी, पर अज कल कुड़ियां वी इस नूं बहुत चाह दे नाल पेशकारी करदियां ने। लुड्डी दी शुरुआत उस समय नाल जोड़ी जांदी है जदों जंग जां किसी मुकाबले दे विच जित प्राप्त करन तों बाद लोक खुशी मनाउंदे होए इह नाच करदे सन। इस विच नर्तक एक हथ कन्न दे पिछे रखदे ने ते दूजा हथ हवा विच लहराउंदे होए ढोल दी धुन ते घूमदे ने। इस नाच दी सब तों वड्डी खासियत इस दी जोश भरी अदाकारी, सादगी अते रवायती पंजाबी अंदाज़ है। अज लुड्डी पंजाबी सभ्याचार, यूथ फेस्टिवल अते सभ्याचारक प्रोग्रामां दा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

एक नंबर नोट कर लो 0181-3342-174। लेकिन ये है उन्होंने लिए जिहड़े संगरूर घूमे आए ने, जिन्हां दी संगरूर दे नाल याद जुड़ी हुई है, तो जिहड़े संगरूर दे दिल तो फैन ने, तो जिन्हां नूं पता है कि असल दे विच संगरूर उन्हां दे दिल दी धड़कन है। चलो लैके चलिए तुहानू पंजाब दे उस जिले दे विच जिस दी धरती ने इतिहास भी लिखिया, साहित भी दित्ता, राजनीति दे विच नाम भी कमाया, ते खेतीबाड़ी विच पंजाब दा माण भी वधाया। जी हाँ, अज सफर है संगरूर दा सफर। एक ऐसा जिला जिथे रियासतां दी शान भी मिलती है, पिंडां दी मिठास भी, अते पंजाबी सभ्याचार दी खुशबू भी। तो बने रहो साडे नाल, क्योंकि अज आपां चलांगे संगरूर दे इतिहास, मशहूर खाने, घूमण वालियां जगह, मेले, लोक सभ्याचार ते होर भी बहुत कुछ। पर जी सब तो पहला गाना हो जाए, अमरिंदर गिल की आवाज़ दे विच सुनदे हैं ये गीत, फिर उस तो बाद चलदे हैं संगरूर दे अलग अलग स्टॉप्स ते।

व्हाट्सएप दे उत्ते फरमाइश आई है गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया प्रमिला ज्योति सरिता तमन्ना सचिन विष्णु शिवम कहते हैं कि नमस्कार जी फिल्म राजकुमार का गीत तूने पुकारा हम चले आए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है प्ले कर देवांगे फिर उस तो बाद अगली फरमाइश आई है कि दिल चाहता है गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी प्रमोद कुमार डुड्डी पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी कोई भी गीत सुना दीजिए ठीक है जी कोई भी गीत सुना देंगे फिर उस तो बाद साढ़े को अगला नाम आया है कि राधे श्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा ये भी कहते कि गीत सुना दो फिर उस तो बाद अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान कुलविंदर कौर हरविंदर कौर मान कहते कि कोई भी फिल्मी गीत सुना दो ठीक है जी सुना देंगे उस तो बाद अगे लिखा है कि पिंड हीरा वाली जिला फजिलका तो सुभाष गोदारा बिमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा तो कहते कि कोई भी तुसी गीत सुना दो ठीक है जी सुना देंगे लेकिन हुण प्ले करन जा रहे हैं आप मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ दे विच तुमने पुकारा और हम चले आए

सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा इन्होंने ये फरमाइश की है। सो प्ले करते हैं इन्हों की फरमाइश का एक गीत।

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली फरमाइश आई है, फिल्म पराया धन गीत का नाम है, आज उनसे पहली मुलाकात जलालाबाद वेस्ट।

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली फरमाइश आई है, लिखा है कि फिल्म बॉबी गीत मैं शायर तो नहीं अनारकली बाजार जगराओं से, ते सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गावरा मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी कहते कि ये गीत प्ले कर दो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद किहड़ी गल दा, आर ही तुहाडा है कि दिल तुहाडा की चाहुंदा है। तो प्ले करन जा रही हाँ तुहाडी पसंद का ये गीत।

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली फरमाइश आई है, लिखा है कि हिंदी गीत सुना दिओ। फिल्म है दिल लगी, काला कंबोज, रजनी बाला कंबोज, सीरत कंबोज, जपजी कंबोज ते गुरफतेह सिंह कंबोज, पिंड मोहन के हठार, जिला फिरोजपुर तो ये सानू लिखते ने। फिर उस तो बाद पिंड दा नाम है खारिया, जिला सिरसा हरियाणा, सो प्रताप जुनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया कहते हैं कि कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी ठीक है, कोई भी गीत सुनवा देंगे। पिंड चंजेड़ी, तहसील खरड़, जिला SAS नगर तो लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक कहते कि कोई भी गीत सुना दो। ठीक है जी, प्ले करन जा रहे हैं फरमाइशी गीत।

व्हाट्सएप दे उत्ते फरमाइश आई है फिल्म डॉन 1979 जिसका मुझे था इंतज़ार, किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दे वल्लों गाया गया एक गाना। फरमाइश करने वाले दा नाम है रजिंदर पाल राणा, रंजू राणा, श्रुति राणा, पिंड बुलारा, लुधियाना, इन्होंने फरमाइश की है। ज़रूर फरमाइश पूरी की जाएगी। इस दे नाल ही मैं दसदा कि FM रेनबो दी स्टूडियो दी कड़ी दे उत्ते इस समय 9:55 हो गए ने ते प्रोग्राम दिल चाहता है इत्थे ही खत्म हुंदा है, समा होर इजाज़त नहीं दे रहा। ठीक 10 बजे तुसी इंजॉय करोगे, सुनोगे प्रोग्राम शामे गज़ल RJ राजवीर दे नाल। फिलहाल प्ले करन जा रही हाँ इस आर दा आखिरी गीत।

बरेलवी साहब लिखते हैं कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में न आने का।

जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नादान पे रोना आ गया। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद में भी सोना चाहता हूँ मैं।

दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है।

कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, वहीं पे गाने चेहरे हैं जहाँ जाएं जिधर मिल जाते हैं।